0: non-essential gold purchases for one, curtailing on, you know, going abroad or for shopping things which are not made in India. Listen in.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai, jisme videshi mudra bahut adhik kharch hoti hai. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा.
0: With that, we're slipping into a very short break. On the other side, we're going to get you the latest when it comes to the Pentagon's biggest ever UFO document dump. That and a lot more. Stay with us.

0: MLA supporters are less. The people swelling and the ground support for him, as well as the ally support for him, is working towards his favour. Meanwhile, Ramesh Chennithala has also confirmed through his sources that he has got almost an equal number of support than with KC Venugopal, and him being one of the most senior leader who had come to the politics at a very young age and became an MLA at the age of 27. In fact, more senior than KC Venugopal, he is expected to be the consensus candidate within a fight that broke out between V.D. Satheesan and K.C. Venugopal. Clearly, there has always been differences of opinion between K.C. Venugopal and V.D. Satheesan, and certainly, it certainly looks like all the three camps are equally at a position of having an advantage.
1: Right, Ashwin, thank you so much. We will keep coming back to you for more on that. Moving on to West Bengal now. As former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's appeal for opposition unity against Bengal's new BJP government has triggered a sharp pushback. That's big news coming in with politics there erupting over Mamata's unity call after DD urges opposition unity against the BJP. It's the Congress and the BJP hitting out at Mamata Banerjee. The Congress party there saying that if Mamata Banerjee needs support, she first and foremost has to accept that Rahul Gandhi is the leader of the India Alliance. And while the BJP is, of course, hitting out, saying that she will call in the Maoists as well, and the TMC there saying the party wants all anti-BJP groups need to come together and be on the same page against the newly elected, BJP as far as Mamata Banerjee is concerned, calling in for a unified front by the opposition.
2: যখন চারিদিকে সন্ত্রাসের একটা বজ্র নিঘাত চলছে, বজ্রপাত, সেখানে ভয় না পেয়ে আমি বাংলার যত রাজনৈতিক বিরোধী দল আছেন, তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি, যদি মনে হয় আবেদনটা গ্রহণযোগ্য করবেন, তা নাহলে করবেন না, এটা আপনাদের অধিকার। কিন্তু আবেদন জানাতে তো কোনো অসুবিধে নেই যারা বিজেপির এগেনস্টে। এমনকি আপনারা যদি বলেন লেফটিস্ট, আমার কোনো ইগো নেই, আমি সবাইকে নিয়েই চলতে চাই।
3: माओवाद को समाप्त कर दिया गया, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम तृणमूल कांग्रेस का है। पश्चिम बंगाल का एक जाने माने कवि एक बार बोला था, जब ममता बैनर्जी इज द मदर ऑफ न्यू कम्युनिज्म, तृणमूल कांग्रेस सत्ता पे आने के लिए माओविस्ट का समर्थन लिया था, तृणमूल कांग्रेस सत्ता पे आने के लिए 2011 में हुजी का समर्थन लिया था, सीमी का जो फाउंडर प्रेसिडेंट है उसी को राज्यसभा का सदस्य बनाया। तृणमूल कांग्रेस का कारण हमारा देश का जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज्ड हो गया, और इसका साथ साथ पूरा देश में आज रोहिंग्या बांग्लादेशी फैल गए हैं।
4: सारे ममता बनर्जी की जमाने में बंगाल पे जितने अत्याचार हुए, जितने दहशत हुई, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। सुनियोजित तरीके से, सोची समझी तरीके से कांग्रेस पार्टी को, और खासकर जो धर्मनिरपेक्ष जो एक जगह बचे हुए थे बंगाल में, उनको तबाह करने के सबसे ज्यादा कोशिश अगर किसी ने की होगी तो उनका नाम ममता बनर्जी। अभी वो खुद सजा भुगत रहे हैं, सबको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ताकत अभी नहीं है अकेले दम पर कुछ करे, सहारा मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस की नाम जिक्र नहीं किए। अगर बचना है तो राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की नेता मानते हुए पहले दरखास्त करें, उसके बाद सोचा जाएगा।
5: हमारा मेन कंसर्न जो है कि अभी भी टीएमसी वर्कर पर अत्याचार चल रहा है। बहुत लोग अपने घर से भगा दिया गया, बहुत लोग को मारा गया, गाली गलौज तो चल रहा है। ममता बनर्जी का घर के सामने भी प्रदर्शन हो रहा है। हमारे पार्टी ये पुकार दिया है कि सब बीजेपी विरोधी दल इकट्ठा हो जाए, इसके खिलाफ आवाज उठाए।
1: Right, let's get in Ritik, my colleague who's joining us. That call by Mamata Banerjee, as far as opposition parties are concerned, to come together to on this joint platform against the common enemy, the BJP, but the Congress won't have this. In fact, is hitting out at Mamata Banerjee.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: इंडियाज अनशेकेबल न्यूज हैबिट ndtv.com इज इंडियाज नंबर वन इंग्लिश न्यूज वेबसाइट.

0: அவருக்கு வாழ்த்துக்கள்.
1: Meanwhile, let's turn our attention to West Bengal, where Mamata Banerjee's call for opposition unity has triggered a fresh political showdown. The former chief minister says she is ready to put aside ego and bring all anti-BJP forces together. Appealing to every opposition party in Bengal, Mamata Banerjee said the fight against the BJP must rise above individual ambitions and ideological differences. But the Congress has put a condition for this. Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary said that if Mamata Banerjee truly wants opposition unity, then Rahul Gandhi should be projected as the leader of the opposition bloc. Meanwhile, the BJP has taken a jibe and attacked Mamata Banerjee and alleged that in the name of opposition unity, the TMC could even seek support from Maoist elements. As this political showdown intensifies, listen in to these crucial reactions.
2: যখন চারিদিকে সন্ত্রাসের একটা বজ্র নিঘাত চলছে, বজ্রপাত, সেখানে ভয় না পেয়ে আমি বাংলার যত রাজনৈতিক বিরোধী দল আছেন, তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি, যদি মনে হয় আবেদনটা গ্রহণযোগ্য করবেন, তা নাহলে করবেন না, এটা আপনাদের অধিকার, কিন্তু আবেদন জানাতে তো কোনো অসুবিধে নেই যারা বিজেপির এগেনস্টে। এমনকি আপনারা যদি বলেন লেফটিস্ট, আমার কোনো ইগো নেই, আমি সবাইকে নিয়েই চলতে চাই।
3: মাওবাদকে সমাপ্ত করে দিয়ে গিয়া ফির সে পুনর্জীবিত করার কাজ তৃণমূল কংগ্রেস কা হ্যায়। পশ্চিম বঙ্গাল কা এক জানে মানে কবি একবার বোলা থা যে মমতা ব্যানার্জি ইজ দ্য মাদার অফ নিও কমিউনিজম। তৃণমূল কংগ্রেস সত্তা পে আনে কে লিয়ে মাওয়িস্ট কা সমর্থন লিয়া থা, তৃণমূল কংগ্রেস সত্তা পে আনে কে লিয়ে 2011 মে হুজি কা সমর্থন লিয়া থা, সিমি কা জো ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট হ্যায় উসি কো রাজ্যসভা কা সদস্য বনায়া। তৃণমূল কংগ্রেস কা কারণ হামারা দেশ কা জো ইন্টারনাল সিকিউরিটি হ্যায় কম্প্রোমাইজড হো গিয়া, আর ইসকা সাথ সাথ পুরা দেশ মে আজ রোহিঙ্গা বাংলাদেশি ফ্যাল গয়ে হ্যায়।
4: হামারা মেন কনসার্ন জো হ্যায় কি অভি ভি টিএমসি ওয়ার্কার পর অত্যাচার চল রহা হ্যায়, বহুত লোক আপনে ঘর সে ভাগা দিয়া গিয়া, বহুত লোক কো মারা গিয়া, गाली गलौज तो चल रहा है। ममता बनर्जी का घर के सामने भी प्रदर्शन हो रहा है। हमारे पार्टी ये पुकार दिया है कि सब बीजेपी विरोधी दल इकट्ठा हो जाए, इसके खिलाफ आवाज उठाए।
5: बंगाल की जनता ने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया, कुशासन दुशासन की सरकार को उखाड़ फेंका और टेरर मर्डर कट मनी के नाम से जाने वाली टीएमसी को बाहर फेंका है। सदा सदा के लिए वहां से टीएमसी से मुक्ति मिली है। जो कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस ने वर्षों वर्षों से बंगाल को लूटा, अब हमारा प्रण है सोनार बांग्ला बनाएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बने हैं, संघर्ष किया है और एक बार नहीं दो दो चुनावों में ममता बनर्जी जी को उन्होंने हराया है।
6: আমাদের দিদি বলেছেন যে আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, কাউকে বলেনি, আমি সবাইকে অনুরোধ করছি যে সবাই মিলে একটা আসুন, বিজেপি যে অত্যাচার করছে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা লড়ি, যে গণতন্ত্রকে নষ্ট করছে সেই গণতন্ত্রকে লড়ি। তো বলেছেন, এর মধ্যে রিয়াকশন দিয়েছে সিপিএম, কেন ওনার টাকা যাব, আসবেন না, উনি তো অনুরোধ করেছেন, আসতে পারেন।
7: সারে মমতা ব্যানার্জি কি জমানে মে বঙ্গাল পে জিতনে অত্যাচার হুয়ে, জিতনে দহশত হুই, উসকা নতিজা উনকো ভুগতনে পড়েগা। সুনিয়োজিত তরিকে সে, সোচি সমঝি তরিকে সে কংগ্রেস পার্টি কো অর খাসকর জো ধর্ম নিরপেক্ষ জো এক জগা বচে হুয়ে থে বঙ্গাল মে उनको तबाह करने के सबसे ज्यादा कोशिश अगर किसी ने की होगी तो उनका नाम মমতা ব্যানার্জী। अभी वो खुद सजा भुगत रहे हैं, सबको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसकी ताकत अभी नहीं है अकेले दम पर कुछ करे, सहारा मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नाम जिक्र नहीं किए। अगर बचना है तो राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के नेता मानते हुए पहले दरखास्त करें, उसके बाद सोचा जाएगा।
1: Alright, let's turn our attention to the latest coming in at this point. Amid escalating tensions in West Asia and growing concerns over global economic and security fallout, the government of India is now stepping up high monitoring at the very top, because Defence Minister Rajnath Singh will chair a crucial meeting of the Informal Empowered Group of Ministers, or the IGOM, in Delhi this morning. This is politically and strategically significant because, you know, the IGOM mechanism is typically activated when the government believes the situation requires coordinated inter-ministerial oversight, cutting across defence, energy security, diplomacy, trade, aviation and economic preparedness. Akhilesh joins us with the latest at the moment. Akhilesh, break down for us, what's the agenda of this meeting? Who exactly is participating? And what does this tell us about the government's primary areas of concern right now?
0: Well, this group was constituted by the Prime Minister under the leadership of Defence Minister Rajnath Singh since the West Asian war has started. It has been meeting on a regular basis, but now the situation has become very alarming in the sense that yesterday Prime Minister Narendra Modi has made an appeal to all the Indians that they should adopt certain measures to cut down the fuel expenses and also conserve the energy, and also urged about working from home and how people should not buy gold for another 1 year or so. They should cut down on the chemical fertilizer use and also use public transport. So all these appeals were made by the Prime Minister yesterday. So in fact, after that, this appeal, this group of ministers is meeting at 10:30 under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh, and other ministries will be participating in this meeting. Petroleum Ministry will be part of this group. And apart from that, Food and Consumer Affairs and other key ministries will be part of the GOM. And what we've been told by the sources, that the situation will be reviewed about the supply sites and also about the availability of the stock in India. And the further measures to be suggested will be given by this GOM.
1: Akhilesh, as always, thank you so much for breaking down the details for us. Well, you must note, a sharp political confrontation has now erupted after Prime Minister Modi called on citizens to voluntarily cut fuel consumption, avoid unnecessary foreign travel, cut use of chemical fertilizers, and even postpone non-essential gold purchases for a year in order to help India navigate mounting global economic pressures. But politically, these remarks have triggered an immediate backlash from the opposition. The Congress is basically asking quite a pointed question. If the economic situation is serious enough for the Prime Minister to publicly urge lifestyle sacrifices, then why is Parliament not being taken into confidence through a dedicated discussion or special session? This erupts after Prime Minister Modi called for collective participation to help India face global economic disruptions. He said that the citizens must unite and fulfill their duties to the nation. But critics are also accusing the government of subtly preparing citizens for inflationary stress while avoiding a formal political acknowledgement of the scale of this challenge. Addressing a gathering in Secunderabad, though, Prime Minister Modi made the message from the government quite clear. He said global turbulence could eventually impact India's economy, energy security and inflation outlook, and citizens too must share responsibility in reducing pressure on imports and foreign exchange outflows. Here's what the Prime Minister had to say.
8: Gold, यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए।

टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर दो और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है।

0: इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी। कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है, इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो, साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: Prime Minister Narendra Modi addressing a massive public gathering at Sadbhavna Ground in Sobhnath, capping a day of celebrations marking 75 years of the temple's restoration. Early in the day, the Prime Minister performed sacred rituals at the Sobhnath Temple as part of the Sobhnath Amrit Mahotsav. Inside the shrine, he offered Mahapuja and Jalabhishek to Lord Shiva, pouring holy water over the Shivling amid chants of Vedic mantras. He also witnessed the Kumbh Abhishek ceremony, where water collected from pilgrimage sites across India was sprinkled on the temple spire using a crane. The Mahotsav commemorates the temple's inauguration in 1951 by India's first president, Dr. Prasad, after its historic restoration.

अगले दो साल के अंदर आपको ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, पुणे, बंगलुरु, गुड़गांव जाने की जरूरत नहीं होगी, गुना में ही

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
3: Fast moving, it's

0: सिचुएशंस बनी है, हमारी उस स्थिति में भारत को अपनी कमर कसना पड़ेगा। प्रधानमंत्री देश की दायित्व तो उनके हाथ में है, एक व्यापक दृष्टि उनके सामने, इसीलिए उन्होंने एक अपील किया है देश को। मैं मानता हूं पिछले दिनों में जब जब भी प्रधानमंत्री जी ने देश को निवेदन किया है, देश को साथ लेके उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश किया है, देश ने उनको साथ दिया है। हम सभी ने प्रधानमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाना चाहिए।
1: दिस इज अ रादर ड्रामेटिक अपील इफ नॉट अ डायरेक्टिव फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेर इज आस्क्ड पीपल टू वर्क फ्रॉम होम, अवॉइड बाइंग गोल्ड, यूज पब्लिक, ओनली यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कट डाउन ऑन कुकिंग ऑयल, कट डाउन ऑन फर्टिलाइजर, अडॉप्ट स्वदेशी एंड नेगेट फॉरेन ब्रांडेड गुड्स एंड टू अवॉइड फॉरेन ट्रैवल। If the India is facing a very drastic and dramatic situation, it's incumbent upon the government to come and explain why they're giving these kind of directives. What has necessitated the government to give this kind of an appeal or a directive to the people of India?
2: Changes can be conserved. For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve.
3: उन्होंने कहा था कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस समय 5 राज्यों का चुनाव था तो ये दर्शा रहे थे कि नहीं, हम पूरी तरह से जो संकट हमारे सामने है या देश के सामने है उसका सामना करने के लिए हम सक्षम हैं। अब चुनाव ख़त्म हुआ, हम लोग पहले ही कहा था कि 29 तारीख को चुनाव ख़त्म होगा और 29 के बाद तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों की। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हुई ना कि हमारी जो तैयारी थी इस क्राइसिस को फेस करने के लिए वो पर्याप्त नहीं थी।
4: Before I get you exactly how much has the numbers really changed and how has it impacted government finances, listen in to exactly a reaction coming in from the government exhorting people to take public transport in place of private vehicles, save on private fuel consumption. Listen in.
5: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों के से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर हम अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें ताकि देश पर पड़ रहे आर्थिक भार को कम किया जा सके।
4: ओके, सो यू हर्ड ऑल रिएक्शंस दैट हैव बीन कमिंग इन ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदीज ऑस्टेरिटी पुश। लेट्स गेट यू द नंबर्स, हाउ दे स्टैक अप। व्हाई इज इट दैट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ मैसिव राइज इन ऑयल प्राइसेस एवर सिंस द US-Iran war started? Let's put out some of those numbers. First and foremost, oil companies, these are oil marketing companies, they have pretty much kept oil prices at the same level and are absorbing massive losses to ensure that you and I, all our viewers watching this, continue to pay more or less the same amount, barring very minor increases as far as LPG cylinder is concerned. In terms of losses, that is estimated to be about 30,000 crore rupees since middle of March. Remember, this war started on the 28th of February. And from March onwards, when the under-recovery started increasing, that number now stands at upwards of 30,000 crore rupees. And that amount could actually hit about 62,500 crore rupees if the government had not cut excise duties. What does that mean? That government foregoed its own revenues to ensure that oil marketing companies can absorb some of that burden. In terms of numbers, just how much have oil prices increased? It was about $72 before this war started. It's upwards of $140 per barrel. Remember, these are just ballpark indications. India purchases a specific oil basket, and that number could actually be even higher. All of this, of course, is on account of Strait of Hormuz disruption, which continues to remain. That volatility remains. That global energy shock hasn't gone away. It still remains, and that's the reason why it remains a huge cause of concern. As far as Indian prices are concerned, they've largely been unchanged since the 28th of February, in complete contrast to some of the other economies around the world, where prices are pretty much marked to market.

0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: एंड विद दैट सोमनाथ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ जायंट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सिंबलिज्म। इन सोमनाथ टुडे दिस वाज मोर देन अ टेंपल विजिट, इट वाज हेरिटेज, स्पेक्टिकल एंड पॉलिटिक्स ऑल रोल्ड इनटू वन। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: least are trying to regroup and retry. One of them is Mamata Banerjee. On the day that the first BJP government surged,
1: अभी तमिलनाडु में ही देखिए 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था. डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी. लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया.
0: Well, the Prime Minister might be having his moment at the expense of the Congress right now, but the fact is that this drift within the opposition is not new. From 2018, when they first came together in Mumbai on one platform to bring down their common enemy, the BJP, this coalition has seen a steady erosion. And in fact, very frequently, they have worked to chip away at each other's bases. So now, will there be any takers for Mamata Banerjee's unity pitch? So far, that seems very, very unlikely. And if that is indeed the case, will Narendra Modi remain unchallenged and maybe undefeated, given just how divided and scattered the opposition today is in 2026?
2: सारे ममता बनर्जी की जमाने में बंगाल पे जितने अत्याचार हुए, जितने दहशत हुई, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा. सुनियोजित तरीके से, सोची समझी तरीके से कांग्रेस पार्टी को और खासकर जो धर्मनिरपेक्ष जो एक जगह बचे हुए थे बंगाल में, उनको तबाह करने के सबसे ज्यादा कोशिश अगर किसी ने की होगी तो उनका नाम ममता बनर्जी. सहारा मांग रहे हैं लेकिन फिर भी कांग्रेस की नाम जिक्र नहीं किए. अगर बचना है तो राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की नेता मानते हुए पहले दरखास्त करें, उसके बाद सोचा जाएगा.
3: पॉइंट इज नोबडी नीड्स टू एडवाइस लेफ्ट. लेफ्ट हैज बीन कंसिस्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट बीजेपी, आरएसएस एंड ऑल राइट विंग फोर्सेस. वी डोंट नीड anybody's advice. We have been fighting, and that is what I am saying. If at all there is a force uncompromisingly, consistently fighting against BJP and right-wing forces, that is left.
4: वो माओवादी को भी बुला लेंगे. जो माओवाद को समाप्त कर दिया गया उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम तृणमूल कांग्रेस का है. पश्चिम बंगाल का एक जाने माने कवि एक बार बोला था, जब ममता बनर्जी इज द मदर ऑफ न्यू कम्युनिज्म. तृणमूल कांग्रेस सत्ता पे आने के लिए माओविस्ट का समर्थन लिया था. तृणमूल कांग्रेस सत्ता पे आने के लिए 2011 में हुजी का समर्थन लिया था. तृणमूल कांग्रेस का कारण पश्चिम बंगाल की सारे सीमावर्ती जिला का जनसंतुलन बिगड़ गया, और इसका साथ साथ पूरा देश में आज रोहिंग्या बांग्लादेशी फैल गए हैं.
5: माई ब्रदर स्टालिन, एल्डर ब्रदर स्टालिन, आई डोंट कॉल एनी अदर पॉलिटिशियन ब्रदर.
6: காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்.
0: All right, and joining us on the show today, we have Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, Sajjan Kumar, political analyst Ashutosh. We also have with us Sophia Khan of the Trinamool Congress, will be joining us in just

0: say one thing in Viju's favor. I can't speak for others, I can speak for myself. Whenever Riju has been on any debate with me, he's always made it a point to say Sanju Verma is one of my favorite spokespersons. So I don't know if my vision is colored, but I will just say this, Der aaye durust aaye to Riju. I think that sums up the essence of what I wish to convey. And of course, if his family is being threatened, keep political ideologies aside, I would not wish that on anyone. And I say that very sincerely. It doesn't matter whether you're from Congress, TMC, Samajwadi Party, what have you. Our families are precious. There's no, compromise on
1: No,
0: that.
1: that's fair. But the point is that you may take a swipe at the Congress right now saying that they are nowhere, the opposition is completely decimated. Eventually, the Congress will emerge as the principal challenger because they are the only national party. And yes, if in the short term they have to antagonize regional parties like the DMK and TMC, so be it.
0: पद्मजा जी, मेरे बोलने की बारी आती है, आप मुझे एक सवाल पूछती है, मैं जवाब देती हूँ, उसके पहले आप दूसरा सवाल करती हैं। विद नो ऑफेंस टू यू, लेट्स गेट वन थिंग वेरी क्लियर। जेपी नड्डा आर फॉर्मर बीजेपी नेशनल अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कांग्रेस के बारे में, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कांग्रेस इज नो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, नो कॉमन पोलिटिकल एजेंडा, नो आइडियोलॉजी, so to speak. What has till date bound the rather flimsy and frivolous dot dot alliance? Yes, INDI, the India alliance, I refer to it as the dot dot alliance. The only common binding glue is their visceral hatred for one man, Narendra Modi. Uske ilawa, inke paas koi binding glue nahi hai. Now let's be very clear about one thing. I'll come to, the fact that, oh, in West Bengal, the Congress and the left have joined forces historically to counter the TMC. But in Kerala, the Congress and the left have fought against each other. That is not the moot point that I'm driving at. That is something that is known to everybody who follows politics. I just want to say one thing. आप कांग्रेस का इतिहास देखिए. The Charan Singh government in 1979 was brought down by whom? By the Congress party. The Chandrasekhar government in 1991 was brought down by whom? By the Congress party. The H.D. Devegowda government in 1997, Padmaja ji, was brought down by whom? By the Congress party. The 1998 government of I.K. Gujral was brought down by whom? By the Congress party. So what am I trying to say? Be it Charan Singh, be it V.P. Singh, be it H.D. Devegowda, be it I.K. Gujral. ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं. लेट्स गेट दैट वेरी क्लियर. आई डोंट नीड टू गो बैक टू 1998 व्हेन सीताराम केसरी वाज सपोजिटली लॉक्ड अप इन अ टॉयलेट एंड सोनिया गांधी डिक्लेयर्ड हरसेल्फ द
1: तो
0: कांग्रेस.
1: ठीक है ना, ठग के ही सही, बट एटलीस्ट नाउ दे आर इन गवर्नमेंट इन थ्री स्टेट्स इन द साउथ. देव गॉट कर्नाटका, देव गॉट तेलंगाना, फोर स्टेट्स एक्चुअली, देव गॉट केरला एंड देव गॉट तमिलनाडु. थोड़ी सी ठगी ठीक है ना, सरकार तो मिल गई उनको.
0: अरे पद्मजा जी, यदि कांग्रेस का आप इतना गुणगान कर रही हैं तो बीजेपी के लिए दो शब्द बोल दीजिए. आई विल से दिस डंके की चोट पर, 73% ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी एंड 78% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज रूल्ड बाय हूम? बाय बीजेपी. कान खोल कर सुन लो, अगले 40-50 साल तक, नॉट टू यू पद्मजा जी, आपके जो यहाँ पर ऑपोजिशन के दरबारी बैठे हैं, कान खोल कर सुन लो, अगले 40-50 साल तक बीजेपी को कोई छू तक नहीं सकता.
1: Okay, let me bring in Sophia Khan, Ashutosh and Riju Datta at this point, who I'm very confused which side is he on right now. Sophia Khan, 40-50 साल तक कोई बीजेपी को छू नहीं सकता, भले से ही दीदी के साथ कांग्रेस आए या ना आए. और आपके तो लोग अब कह रहे हैं कि खुद टीएमसी एक साथ नहीं है, बाकी का आईएनडीआई क्या ही साथ में आएगा. सोफिया खान.
2: नमस्कार, आदाब आप सभी को. देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी जितने भी तृणमूल कांग्रेस के वर्कर हैं, स्पेशली जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं, उन्होंने दिन रात एक किया. 4 महीने, 4 महीने नहीं, इनफैक्ट हम तो सालों साल काम करते रहे हैं, लेकिन अभी जिस जो परिस्थिति में ये 4 महीने से जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने जो संघर्ष किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई दूंगी. और जो लोग आज भी तृणमूल कांग्रेस के कह सकते हैं, देखिए तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से

0: गायब नहीं हुआ है। ये कह सकते हैं कि पहले सत्ता पक्ष में थे, अब विपक्ष में हैं। तो विपक्ष में आने के बाद देखिए हर दौर में होता रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बल्कि जो लोग भी सत्ते से जाते हैं कई लोग उनका दामन छोड़ देते हैं। तो जो लोग आज भी डट के खड़े हैं, डट के लड़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने विचारों के साथ समझौता नहीं किया, जिन्हें अपने वैल्यूज को नहीं खोए, ममता बनर्जी के आदर्शों पे जो आज भी लड़ रहे हैं, डेफिनेटली वो ममता बनर्जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुद्दा है वो सिर्फ भाजपा को हराने की, गिराने की या उनको पिछाड़ने की नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का मुद्दा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है। इंडिया गठबंधन में जैसे जिस तरीके से मुद्दे से जिस लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है, वही लड़ाई यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस भी लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके का कोई डिस्कशन का पात्र है, बिकॉज ममता बनर्जी आज वही डटी हुई है, उनको अपने सीट से हरवा दिया गया, ये जो भी हुआ मैं उस बारे में नहीं जाती हूँ किस परिस्थिति में जो चीजें हुई वो पूरे देश ने देखा।
1: नहीं, पर आज अब आप सबको कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी लेफ्ट फार लेफ्ट सब लोग साथ में आ जाए, कोई आप पे भरोसा क्यों करे? पहले तो आपने उनको यूज एंड थ्रो कर दिया, आज वो आपका भरोसा क्यों करे जब आपके खुद के लोग कह रहे हैं कि आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, आप उनको पीट रहे हैं, आपके जो साथी थे पहले कांग्रेस वाले वो कह रहे हैं आप उनको पीट रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं, उनके साथ आपने चुनाव नहीं लड़ा। Why should they trust you, जब आप उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, वो क्यों तृणमूल के साथ आए कांग्रेस?
0: देखिए राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जब लोगों का तृणमूल कांग्रेस में लगभग 80% लोग तृणमूल थे, जो लोग किसी पद में थे वो भी तृणमूल थे, जो पद में नहीं थे वो भी तृणमूल थे, तो ये होता ही है। अब तृणमूल जो है बहुत ज्यादा बहुमत के साथ 2021 में जब तृणमूल आई थी तो हर एक लोग, अभी एक नॉर्मल से जो लोग भी होते थे ना, वो लोग भी कहते थे कि भाई मैं तृणमूल का समर्थक हूँ, मैं तृणमूल।
1: रिजु दत्ता सोफिया खान को रखिए, रिजु दत्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। चलिए इवेंचुअली ये लोग सब साथ में जो डट करके खड़े हैं वही लड़ेंगे, पीपल लाइक यू कैन लीव, आपने छोड़ दिया अलग बात है, पर जो लोग अभी भी लड़ रहे हैं वो इवेंचुअली साथ में आएंगे।
2: नहीं, जो पार्टी के कर्मी है, जो आज भी पार्टी के साथ खड़ी है, तो उनको तो मैं भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और बात यह है कि तो हमने तो छोड़ा नहीं, हमको तो निकाला गया धन्यवाद बोलने के लिए। और मैंने पार्टी के लिए क्या किया है क्या नहीं किया है, मुझे लगता है कि देश के हर नेशनल चैनल के आर्काइव में वो है। एंड द टफेस्ट असाइनमेंट्स अगेंस्ट द करेंट चीफ मिनिस्टर इन हिज होम ग्राउंड ऑफ नंदीग्राम, आई वॉज देयर ड्यूरिंग द पंचायत पोल्स, आई वॉज सेंट टू नंदीग्राम ब्लॉक 1 फॉर 27 डेज ऑफ मिस्टर अभिषेक बनर्जी शेबास्रॉय, आई वॉज पोस्टेड एट नंदीग्राम इवन 2 days बिफोर द पोल रिजल्ट्स ऑन 4th मे, ऑन 2nd मे यू कैन सी तृणमूल कांग्रेस सेंट मी एंड MP शायनी घोष एज द काउंटिंग ऑब्जर्वर पूर्व मेदनीपुर विच इज द अधिकारी बैस्टियन। सो आई डिड माई पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू अब्यूज एनीबडी हु इज डूइंग तृणमूल कांग्रेस, नथिंग अगेंस्ट देम। आई हैव वन सिंसियर अपील टू एवरीबडी हु इज डूइंग तृणमूल कांग्रेस। क्या मैं बोल सकता हूँ पद्मजा?
1: बोलिए।
2: सो माई ओनली हम्बल ओपिनियन, Sophia, I know personally, she is a good girl. She is doing the job I have been doing for the last 9 years. So I understand where she is coming from. But or I have defended the indefensible, Padmaja, you know, RG Kaur, Sandesh Khali, Harsh Khali. On 22nd July, when hordes of cash were...
1: No, so who told you to defend the indefensible? No. Then no, people like Sophia Khan will say, Riju Datta, that at this time, at least they are still standing where they were standing 1 month ago. आपने defend किया indefensible को और अब आप पलट गए क्योंकि TMC हार गई है. Sophia Khan आज भी वहीं खड़ी हुई है.
2: Padmaja, I know you when you are in Times Now and you are doing fantastically well here. So when I was in Trinamool Congress, I did what I was supposed to do as the spokesperson of the
1: party. But when I was in another channel, Riju Datta, at that time I did not tell a girl who had been arrested by the West Bengal police to say कि अगर ये मेरा बेटा होता मैं इसका अंतिम संस्कार कर देता. मैंने कभी नहीं कहा किसी लड़की के बारे में दैट आई वुड हैव डन द अंतिम संस्कार ऑफ दिस गर्ल. यू सेड दिस अबाउट अ यंग टीनेजर. यू हैव डिफेंडेड द मर्डर एंड रेप ऑफ अ यंग गर्ल एंड द फैक्ट दैट TMC कार्डर वेंट एंड बीट अप यंग डॉक्टर्स. You did it because at that time you were in power, Riju Datta, and today Sophia Khan will ask you that. आज नहीं आप पलट सकते ना क्योंकि TMC हार गई.
2: Of course, मैं पलट नहीं रहा हूं और मैं TMC से निकला नहीं हूं, मुझे निकाला गया है. Again, I've reiterated that point. But the thing is, again, I will say, which you have raised a very valid question, Padmaja. Whatever things I did, what I said, at the TMC was in power, and as the spokesperson of the party, I did. There are multiple spokespersons that come on your channel who were in different parties before, who abused BJP like anything. Now they are in BJP spokespersons. So these things happen when you, like Sophia, I hope she is made the spokesperson of Trinamool Congress. She has been appearing on her own on channels for a very long time, and she's doing her job, and she's still standing with TMC. Hmm. I also would have stood with TMC if one of my leaders would have picked up my call, or forget picked up my call, would have sent us little WhatsApp text, are you okay? Three letters. Do I not deserve that after 13 years giving this party? Are you okay? I ask Sophia here. She has protected her family on her own. She cannot say that, I know on record, but is the Honorable MP of North Calcutta picked her phone up? I am telling you, no. There is a WhatsApp chat that has come viral where Honorable Sudhi Bandyopadhyay is saying, when councillors are saying we are unprotected, people are ransacking our house. Hmm. Honorable MP is saying, Hati chale bazaar, kutte bhauke hazaar. Ye alam hai. और कोई अपना परिवार को बचाए और बीजेपी को थैंक यू बोले तो निकाल दो उसको पार्टी से.
1: बताइए सोफिया खान, जब अपने घर ही में लोग सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों को कैसे अपने साथ खड़ा करेंगे?
0: एक मिनट का समय दीजिएगा, मैं पूरी चित्र बताती हूँ. मैं कुछ हद तक, देखिए रिजू जी को मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ पर्सनली, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. और रिजू जी का जो टेक था ना, मैं नहीं कहती कि वो गलत है, सही है. देखिए 4 तारीख के बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के घरों को, दफ्तरों को जैसे जलाया गया, जैसे डराया गया, जैसे मारा गया, जैसे गोलियां चली दोनों तरफ से, और किसी भी तरह का सुरक्षा कुछ भी नहीं था, तो देखिए डेफिनेटली ये तो कुछ
1: ना. रिजू दत्ता कह रहे हैं वो तृणमूल नहीं मारा है तृणमूल को, यही तो फर्क है. वो कह रहे हैं कि तृणमूल के ही लोगों ने तृणमूल को मारा है.
0: किसने किसको मारा, सबकी जाने जाने होती हैं, यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी के उनको जो मारा गया वो भी एक इंसान था. मैं किसने किसको मारा मैं उस पे नहीं आ रही हूँ. बीजेपी के लोग मारे, वो भी ग्रास रूट लेवल के लोग.
1: बोलिए रिजू, बोलिए.
0: लोग मारे वो
1: भी. पूछे पूछे.
0: मैं इस चीज को मान रही हूँ, यहाँ पर मैं के साथ हूँ. इन्होंने मैं भी देखिए, इनका जो टेक है ना, ये हो सकता है कि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए ये स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए था, ये मुझे लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है.
2: सोफिया,
0: इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था रिजू जी आपको, डट के खड़े रहना था. मैं कुछ हद तक मान रही हूँ आपकी बात. आज मैं एक लड़की हूँ, मुझ पे भी, मैं ऑफिशियल एक स्पोक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भी बहुत से थ्रेट्स का सामना करना पड़ा. कई लोगों ने मुझे समझाया, अरे सोफिया तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, मत बोलो.
2: सवाल पूछ सकता हूँ?
1: पूछे पूछे रिजू दत्ता.
2: एक सवाल. तृणमूल कांग्रेस लास्ट 8-10 दिन से, मतलब सॉरी 8-10 दिन नहीं, 4 तारीख से आज तक हैज बीन कॉन्स्टेंट. सोफिया एक सवाल सुन लो. तृणमूल कांग्रेस फ्रॉम 4th till today 11th, हर रोज तृणमूल कांग्रेस अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट पोल वायलेंस के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं. सोफिया आपको पता है सारे लीडर्स पोस्ट कर रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस के आज भी 80 विधायक है और 42 सांसद हैं, जिनके पास प्रिविलेज भी है, जिनके पास सिक्योरिटी भी है. जब आप फोटो और वीडियो डाल रहे हैं पोस्ट पोल वायलेंस का, आप डाल रहे हैं कहां पर हो रहा है, किस जीपी में हो रहा है, एक भी सांसद वहां क्यों नहीं गया, एक भी विधायक वहां क्यों नहीं गया, कैडर्स मर क्यों रहे हैं?
0: मेरा क्वेश्चन है आपसे रिजू जी, मैं एक क्वेश्चन करूंगी, सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगी. देखिए जो हालात थे ना, जिस तरीके से 91 लाख लोगों का नाम काटा गया और 27 लाख लोगों को वोटिंग नहीं करने दिया गया, कुछ हद तक संभव, ये हम भी समझ रहे थे कि हमारी हार कुछ हद तक निश्चित है, ये हम जानते थे. लेकिन ये स्टेटमेंट अगर आप हारने से पहले देते ना, तो मैं खुद आपको सैल्यूट करती, सम्मान भी करती. लेकिन अभी हारने के बाद अचानक से सेकेंड डे आकर बीजेपी के लोगों का आप अचानक से तारीफ करने लगेंगे और उनका
2: मैं सिर्फ इतना कहूंगा,
0: बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगेंगे, ये मर्दानगी नहीं है. ये मैदान को छोड़ के भागने वाली बात है रिजू जी, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए. अभी आपको किसने, आप ऑफिशियल स्पोक पर्सन थे, डेफिनेटली यू वॉज इन डायरेक्ट टच विद अभिषेक बनर्जी एंड देयर पीपल.
1: ओके,
0: आपको इस तरीके का लगा तो
1: दिस. ओके, आई विल गिव रिजू एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल ओपन दिस अप अगेन. यस रिजू रिस्पॉन्ड.
2: And my only response is what Sophia said right now. I was very close to Abhishek Banerjee. She said right now, right? And yes, it is a fact. But my hurt, my pain is that from 4th till today, I have not received a single text from Mr. Banerjee saying, are you okay? After giving 13 years to this party and doing toughest assignments. Number one point. Number two point to Sophia ji. What she is doing her job. I don't blame it because I have done it for years and years and years. But I will say this. The party, no party runs on netas. Party runs on cadres. When people, your cadres are displaced, they are beaten up. You are posting videos and pictures of post-poll violence. Not a single MP with privilege and security has gone there. Nobody has gone there. But in the middle of all this, we are just seeing rhetorics. Why rhetorics? Aaj Trinamool Congress, if they would have come to power, post-poll violence would have been 20-fold more. Or what happened on 6th May when Shubhendu Adhikari, the current chief minister, his personal aide in a filmy style was gunned down in Madhyamgram. If Shubhendu Adhikari would have come out from the nursing home and said, abhi badla hoga, us din raat ko pura Bengal jal jata, 5,000 Trinamool ke karmi mar jate.
1: Okay.
2: On record, I thank Shubhendu Adhikari and Samik Bhattacharj for protecting the lives of Trinamool cadres on that night.
1: Okay, you know, already you have a fractured opposition, and now I want to bring in Sanju Verma and Ashutosh on this. Are you now fishing in troubled waters, Sanju Verma? Already they have got plenty of divisions within, and then you have a Riju Datta even more effusive in his praise of the BJP than Sanju Verma herself.
0: You know, Padmaja, I'm glad at least today one thing Riju Datta admitted to, that he was sent to defend the indefensible and the toughest assignments. Which is indirectly an admission that Mamata Banerjee was to be blamed for the Park Street gang rape. Mamata Banerjee was to be blamed for the Hamsakhali gang rape. Mamata Banerjee was to be blamed for the South Kolkata Law College gang rape. Mamata Banerjee was to be blamed for the Arjikar horror. Mamata Banerjee was to be blamed for the Durgapur horror. But that's not the point that I wish to focus on. Riju Datta today is the flavor of the season. बिकॉज उनको पार्टी से निकाला गया है हम तो अभी भी उसी पार्टी में हैं और उसी पार्टी में रहेंगे इसलिए परहैप्स वी डोंट मेक फॉर गुड टीआरपी बट लेट मी कम टू द सीरियस पॉइंट ऑफ
1: अरे योर पार्टी इज द पार्टी फ्लेवर ऑफ द सीजन संजू वर्मा एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट इनटू द गुड बुक्स ऑफ योर पार्टी चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है चढ़ते सूरज की सारी खूबियां हर कोई देखता है दैट इज व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट रिजु दत्ता दैट योर पार्टी इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन
0: पद्मजा जी मैं एक चीज कहना चाहूंगी यू नो लेट्स नॉट टेक अवे फ्रॉम बीजेपीज स्टुपेंडस सिविलाइजेशनल विक्ट्री इन वेस्ट बंगाल
1: ओके
0: नंबर वन पॉइंट नंबर टू लेट्स नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट द इंडी अलायंस वाज सिंपली अ हॉचपॉच इट वाज नेवर अ कोहेसिव बॉडी आपके पास कोई एजेंडा नहीं है बस सुबह सुबह राहुल गांधी और दरबारी इकोसिस्टम एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देता है जो समाजवादी पार्टी को पहुंच जाता है टीएमसी को पहुंच जाता है आरजेडी को पहुंच जाता है उसमें क्या लिखा होता है मोदी जी को खूब गालियां देनी है
1: अच्छा।
0: नरेंद्र मोदी को गालियां दो
2: तो
0: हम आपको कैसा इनाम देते हैं दैट काइंड ऑफ व्हाट्सएप पॉलिटिक्स पेडल्ड बाय द ऑपोजिशन इज नॉट गोइंग टू वर्क
1: कौन है इस दरबारी इको सिस्टम में बता दीजिए हम भी पूछे क्या इस व्हाट्सएप में आता क्या क्या है
0: दरबारी इको सिस्टम के मुख्य जो यू नो कर्ता धर्ता है वो है राहुल गांधी राहुल गांधी मिनियंस लाइक पवन खेरा
1: okay.
0: कुछ समय पहले तक भगोड़ा खेरा कहलाया जाता था फिर यू हैव द लाइक्स ऑफ जयराम रमेश सुप्रिया श्रीनेत फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके तेजस्वी यादव हैं एम के स्टालिन तो खैर अभी बेचारे बाहर निकल चुके हैं कि राहुल गांधी है शोन हिम कि वी डोंट केयर टू हूट्स अबाउट यू उस व्हाट्सएप ग्रुप में अखिलेश यादव है जो 2027 तक आते आते वो भी आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकलेंगे
1: एक्चुअली फ्रॉम 2018 अ लॉट ऑफ पीपल हैव एग्जिटेड दैट व्हाट्सएप ग्रुप बिफोर आई कम टू आशुतोष क्विक पॉइंट दैट रिजु दत्ता वांट्स टू मेक यस
2: आई वांट टू मेक अ सिंपल हम्बल सबमिशन टू माय फेवरेट स्पोक्सपर्सन संजू जी फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस डोंट make the mistake that Trinamool Congress did because on 2nd of May on NDTV in Kolkata with Rahul Kaval, I said 15-20 saal Trinamool ko koi hara nahi sakta, 200 seate aayengi. It was the hubris that brought our downfall. So don't believe in hubris. That's all I'm saying.
1: It's okay, answer Sanju Verma, yes.
0: Yes. Riju Datta ji ko meri ek hi salah hai. And this is solicited advice because you named me, so I'm giving it to you. What is the difference between Narendra Modi and Mamata Banerjee? Halanki, there is no comparison. Narendra Modi, ek taraf Sonia Gandhi plus Rahul plus Akhilesh plus Tejasvi plus Mamata plus Stalin plus Falana plus Dhamkila on the other side. The point is,
3: Narendra Modi, despite being Prime Minister for the third time running, has never lost touch with the... Whereas Mamata Banerjee's politics towards the fag end of her political career as a chief minister was driven by hubris and arrogance. Aur politics mein hubris aur arrogance ki koi jagah nahi hoti.
2: यही तो मैंने बोला, यही तो मैंने बोला।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आके और मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्थोर मसाला।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: उनमें पेट्रोल नहीं लगता क्या? कोई भी मंत्री कहीं भी जाएगा, कमांडो साथ होंगे, बिना वजह का पेट्रोल का फिजूल खर्ची, पहले अपने खर्चे रोक ले।
1: अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की खराब हो रही है, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी तक हम सक्षम है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सारी विश्व में हल्ला हंगामा है और हम शांति में जी रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर होता चला जा रहा है, तो ये भी एक कारण है कि सब मजबूती आएगी, अपना गुल्लक अपने पास रहे।
2: तो उस महंगाई से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक सही अपील की है, जो वास्तव में सही बात है कि हम सब लोगों को आगामी आने वाले खतरे को देखते हुए या युद्ध लंबा ना चल जाए उस चीज को देखते हुए हम लोगों को इन खर्चों में अपनी कटौती करनी चाहिए।
3: स्थिति गंभीर बनी हुई है देश को लेके, अब एक दूसरे कंट्रियों में युद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब अपने भारत पे भी असर इस चीज़ का पड़ रहा है, लोगों को बहुत अच्छी तरीके जान भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ सिर्फ जनता के लिए यही चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए रूल को, जितने मंत्री को जितनी ज़रूरत है काटले की उतनी गाड़ी जरूरत उनके साथ चले, बाकी जो तीन तीन चार चार गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलती है वो भी हटाई जाएँ।
4: विदेश यात्रा भी सारे अमीर लोग ही करे हैं, गरीब लोगों के बस की विदेश यात्रा करनी है, सारे अमीर लोग यात्रा करे हैं, अमीरों पे लगाम लगाओ ना, इन पे लगाम लगाओ।
5: ये बयान तो ठीक है, मगर जिसको खरीदना है, शादी हो कुछ भी हो, तो फंक्शंस में खरीदना है तो वो तो खरीदेगा, उसकी तो नीड है।
6: ये नहीं लगता है कि हम लेडीज जो हैं हम लोग कुछ भी कम करने वाली हैं। आई मीन इफ यू हैव टू बाय वी विल बाय, आई थिंक सो। एंड कुछ हद तक हाँ लोगों पे इम्पैक्ट आएगा।
7: सिचुएशन ऐसी है जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें अलार्म की जरूरत होती है, ऐसे ही आम आदमी को देश के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो मोदी जी जब किसी चीज़ का अलार्म बजाते हैं तो पब्लिक सतर्क हो जाती है, तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि एक ये अलार्मिंग सिचुएशन है।
8: कारीगर हैं, यहाँ के शिल्पकार हैं, यहाँ के अच्छे वो हैं, उसी से तो बहुत लोगों को रोजगार भी लगा है। सोना ना खरीदो तो लोगों पे इस चीज़ का गलत असर ये पड़ा कि सोना खरीदो ही ना भाई। तो उन शिल्पकारों का, उन सुनारों का, जो काम करने वाले कारीगर हैं, उनका क्या होगा?
9: सराफा व्यापारियों का घर कैसे चलेगा, इसका दिशा निर्देश जारी करें।
10: सोना नहीं बेचेंगे तो वो लोग खाएंगे क्या, उसके उसके उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे, और उसके साथ जुड़े वो लोग और सब चीज़ें, और बैंक की जो किस्तें वो देते हैं, जो लोन ले रखा है, वो सब कैसे जाएगा?
11: And from sacred rituals atop Somnath's towering shikhar to a spectacle blending faith with modern engineering, Prime Minister Modi's temple visit turned into a grand showcase of symbolism and spirituality at the Somnath temple today. Here's a detailed report on that.
12: Har Har Mahadev!
13: From chants of Har Har Mahadev,
12: Har Har Mahadev, Har Har Mahadev,
13: to saffron-lined streets packed with devotees, Somnath turned into a spectacle of faith and power politics. Prime Minister Narendra Modi arrived in the temple town to mark the 75 years of Somnath's restoration. A shrine seen as a symbol of India's civilizational resurgence.
14: Main yahan dekh raha hu hazaron varshon ki aadhyatmik chetna ko jisne मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
13: The centerpiece of the ceremony, the Grand Kumbh Abhishek. Holy waters collected from 11 major pilgrimage sites across India were offered during the rituals.
15: Bhave bhave nati bhave bhavasman bhod bhavai namaha vamadevai namo jeshthai namaha shreshthai namaha rudrai namaha.
13: Then came the breathtaking moment. A sacred kumbh was lifted nearly 90 meters high by a massive crane, all the way to the temple's towering shikhar for the consecration ritual. Ancient tradition powered by modern engineering.
15: Om Tridalam Trigunakaram Tinetram Chatrayudam Trijanma Papa Samaharam Ekabilvam Sivarpanam.
13: Prime Minister Narendra Modi performed the Mahapuja amid Vedic hymns.

0: in the election and becoming the chief minister now, Venkat sir, feel, you know, to you personally, like a bit of a vindication? Because it must have been disappointing to not be able to bring the film out for his fans in a timely manner. And now the reality and the truth is that the film didn't need to come out, like you said, for him to be accepted by the people. Maybe it was written in the stars that it should come out after he becomes the chief minister.
1: True. I mean, the way we had planned was to bring out the movie into theaters in the month of January during the Pongal time. And everybody were looking forward to it. We had planned for grand release worldwide. And we did an audio function in Malaysia, which saw huge crowds, and it was a record by itself. This was definitely unexpected. Fans were also very disappointed. They were angry as well. But it is what it is, and we need to follow the process.
0: Yeah.
1: But I'm sure, you know, if you see, the people of Tamil Nadu have got so much of love and affection on him, and they treat him as a family member. That's why, in spite of whatever the hurdles Jananayagan has been going through, you also have tracked his journey to the CM post. He has also gone through a lot of hurdles. You know, in spite of all that, people have trusted him, elected him as a leader to fulfill their aspirations and ambitions. And they have huge expectations from him. And he also understands the needs of the people. I have seen him closely, the way he functions, the way he works. And I think he'll definitely bring in a change. With time, you'll realize that he's here to make a big difference in governance and the way politics are done.
2: A political showdown has erupted after Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to help the nation to combat price rises, with suggestions like work from home, reduce fuel consumption, buying gold and travelling abroad. Rahul Gandhi, meanwhile, has taken a compromise Prime Minister jibe and called this failure of government's policy. He has also stated that government is shifting responsibility to skip accountability. Congress has said that a parliament session should be called to discuss the issue. Also, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav questioned the government and asked why only citizens are asked for these kind of restrictions. Now, this erupts after Prime Minister called for collective participation to help India face global economic disruptions. He said that the citizens must unite and fulfill their duties to the nation.
3: Sone ki ayat par bhi desh ka bahut bada paisa videsh jata hai. मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले गोल्ड की जरूरत नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है. पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव. इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है. अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है.
2: With that, let's also take a look at how the people are reacting to Prime Minister's suggestion to tackle price rises amid the Middle East conflict.
4: जैसे एक नेता कहीं भी जाता है तो उसके साथ 20 गाड़ियां बड़े आराम से चलती हैं, उनमें पेट्रोल नहीं लगता क्या? कोई भी मंत्री कहीं भी जाएगा, कमांडो साथ होंगे, बिना वजह का पेट्रोल का फिजूल खर्ची पहले अपने खर्चे रोक लें.
5: अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की खराब हो रही है तो अब कुछ तो करना पड़ेगा ना. अभी तक हम सक्षम है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सारी विश्व में हल्ला हंगामा है और हम शांति में जी रहे हैं. डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर होता चला जा रहा है तो ये भी एक कारण है कि सब मजबूती आएगी, अपना गुल्लक अपने पास रहे.
6: तो उस महंगाई से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक सही अपील की है
5: जो वास्तव में सही बात है कि हम सब लोगों को आगामी आने वाले खतरे को देखते हुए या युद्ध लंबा ना चल जाए उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों को इन खर्चों में अपनी कटौती करनी चाहिए।
6: स्थिति गंभीर बनी हुई है देश को लेके, अब एक दूसरी कंट्रियों में युद्ध हो रहा है तो इसका मतलब अपने भारत पे भी असर इस चीज़ का पड़ रहा है, लोगों को बहुत अच्छी तरीके जान भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ सिर्फ जनता के लिए यही चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए रूल को, जितने मंत्री को जितनी ज़रूरत है काटले की उतनी गाड़ी जरूरत उनके साथ चले, बाकी जो तीन तीन चार चार गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलती है वो भी हटाई जाएँ।
7: विदेश यात्रा भी सारे अमीर लोग ही करे हैं, गरीब लोगों के बस की विदेश यात्रा करनी है, सारे अमीर लोग यात्रा करे हैं, अमीरों पे लगाम लगाओ ना, इन पे लगाम लगाओ।
8: ये बयान तो ठीक है, मगर जिसको खरीदना है, शादी हो कुछ भी हो, तो फंक्शंस में खरीदना है तो वो तो खरीदेगा, उसकी तो नीड है।
9: ये नहीं लगता है कि हम लेडीज जो हैं हम लोग कुछ भी कम करने वाली हैं। आई मीन इफ वी हैव टू बाय वी विल बाय, आई थिंक सो। एंड कुछ हद तक हाँ लोगों पे इम्पैक्ट आएगा।
10: सिचुएशन ऐसी है जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें अलार्म की जरूरत होती है, ऐसे ही आम आदमी को देश के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो मोदी जी जब किसी चीज़ का अलार्म बजाते हैं तो पब्लिक सतर्क हो जाती है, तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि एक ये अलार्मिंग सिचुएशन है।
11: कारीगर हैं, यहाँ के शिल्पकार हैं, यहाँ के अच्छे वो हैं, उसी से तो बहुत लोगों को रोजगार भी लगा है। सोना ना खरीदो तो लोगों पे इस चीज़ का गलत असर ये पड़ा कि सोना खरीदो ही ना भाई। तो उन शिल्पकारों का, उन सुनारों का, जो काम करने वाले कारीगर हैं, उनका क्या होगा?
12: सराफा व्यापारियों का घर कैसे चलेगा, इसका दिशा निर्देश जारी करें।
13: सोना नहीं बेचेंगे तो वो लोग खाएंगे क्या, उसके उसके उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे, और उसके साथ जुड़े वो लोग और सब चीज़ें, और बैंक की जो किस्तें वो देते हैं, जो लोन ले रखा है वो सब कैसे जाएगा?
2: And from sacred rituals atop Somnath's towering shikhar to a spectacle blending faith with modern engineering, Prime Minister Modi's temple visit turned into a grand showcase of symbolism and spirituality at the Somnath temple today. Here's a detailed report on that.
14: Har Har Mahadev!
15: From chants of Har Har Mahadev,
14: Har Har Mahadev, Har Har Mahadev,
15: to saffron-lined streets packed with devotees, Somnath turned into a spectacle of faith and power politics. Prime Minister Narendra Modi arrived in the temple town to mark the 75 years of Somnath's restoration. A shrine seen as a symbol of India's civilizational resurgence.
16: Main yahan dekh raha hu hazaron varshon ki aadhyatmik chetna ko jisne मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
15: The centerpiece of the ceremony, the Grand Kumbh Abhishek. Holy waters collected from 11 major pilgrimage sites across India were offered during the rituals.
17: Bhave bhave nati bhave bhavasman bhavad bhavai namaha vamadevai namo jeshthai namaha shreshthai namaha rudraai namaha.
15: Then came the breathtaking moment. A sacred kumbh was lifted nearly 90 meters high by a massive crane, all the way to the temple's towering shikhar for the consecration ritual. Ancient tradition powered by modern engineering.
17: Om Tridalam Trigunakaram Tinetram Chatrayudam Trijanma Papa Samaharam Ekabilvam Sivarpanam.
15: Prime Minister Narendra Modi performed the Mahapuja amid Vedic hymns,
17: Bilvapatrani Samarpayami,
15: temple bells and

0: are doing. So congratulations to him as well.
1: Thank you.
0: You know, now let me get straight to the brass tacks. I have had some very noisy, vicious, very cantankerous debates with Riju. Riju has made some statements which has left many of us disillusioned. Some were very upsetting. But I have to say one thing in Riju's favor. I can't speak for others. I can speak for myself. Whenever Riju has been on any debate with me, he's always made it a point to say Sanju Verma is one of my favorite spokespersons. So I don't know if my vision is colored, but I will just say this. There I durust hai to Riju. I think that sums up the essence of what I wish to convey. And of course, if his family is being threatened, you know, keep political ideologies aside. I would not wish that on anyone. And I say that very sincerely. It doesn't matter whether you're from Congress, TMC, Samajwadi Party, what have you. Our families are precious. There's no, compromise on that.
1: No, that's fair. But, you know, the point is that you may take a swipe at the Congress right now saying that they are nowhere. The opposition is completely decimated. Eventually, the Congress will emerge as the principal challenger because they are the only national party. And yes, if in the short term they have to antagonize regional parties like the DMK and TMC, so be it.
0: You know, Padmaja ji, mere bolne ki bari aati hai. Aap mujhe ek sawal poochti hai, main jawab deti hoon. Uske pehle aap dusra sawal karti hai. With no offense to you, let's get one thing very clear. JP Nadda, our former BJP national adhyaksh, unhone kya kaha tha? कांग्रेस के बारे में कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा. कांग्रेस इज नो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, नो कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा, नो आइडियोलॉजी सो टू स्पीक. व्हाट हैज टिल डेट बाउंड द रादर फ्लिमजी एंड फ्रिवलस डॉट डॉट अलायंस, यस INDI, द इंडिया अलायंस, आई रेफर टू इट एज द डॉट डॉट अलायंस. द ओनली कॉमन बाइंडिंग ग्लू is their visceral hatred for one man, Narendra Modi. Uske ilawa, inke paas koi binding glue nahi hai. Now, let's be very clear about one thing. I'll come to, you know, the fact that in West Bengal, the Congress and the left have joined forces historically to counter the TMC. But in Kerala, the Congress and the left have fought against each other. That is not the moot point that I'm driving at. That is something that is known to everybody who follows politics. I just want to say one thing. Aap Congress ka itihas dekhiye. The Charan Singh government in 1979 was brought down by whom? By the Congress party. The Chandrasekhar government in 1991 was brought down by whom? By the Congress party. The H.D. Devegowda government in 1997, Padmaja ji, was brought down by whom? By the Congress party. The 1998 government of I.K. Gujral was brought down by whom? By the Congress party. So what am I trying to say? Be it Charan Singh, be it V.P. Singh, be it H.D. Devegowda, be it I.K. Gujral. Aisa koi saga nahi, jise Congress ne thaga nahi. Let's get that very clear. I don't need to go back to 1998. When Sitaram Kesri was supposedly locked up in a toilet and Sonia Gandhi declared herself the Congress.
1: So, theek hai na, thag ke hi sahi, but at least now they are in government in three states in the south. They've got Karnataka, they've got Telangana, four states actually. They've got Kerala and they've got Tamil Nadu. Thodi si thagi, theek hai na, sarkar to mil gayi unko.
0: Are Padmaja ji, yadi Congress ka aap itna gungan kar rahi hai, to BJP ke liye do shabd bol dijiye. I will say this dunke ki chot par. 73% of India's geography and 78% of India's population is ruled by whom? By BJP. Kaan khol kar sun lo. Agle 40-50 saal tak. Not to you, Padmaja ji. Aapke jo yahan par opposition ke darbaris baithe hain, kaan khol kar sun lo. Agle 40-50 saal tak BJP ko koi chhu tak nahi sakta.
1: Okay, let me bring in Sophia Khan, Ashutosh and Riju Datta at this point, who I'm very confused which side is he on right now. Sophia Khan, 40-50 saal tak koi BJP ko chhu nahi sakta, bhale se hi didi ke saath Congress aaye ya na aaye. Aur aapke to log ab keh rahe hain ki khud TMC ek saath nahi hai, baki ka INDI kya hi saath mein aayega. Sophia Khan.
2: नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी जितने भी तृणमूल कांग्रेस के वर्कर हैं, स्पेशली जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं, उन्होंने दिन रात एक किया। चार महीने नहीं, इनफैक्ट हम तो सालों साल काम करते रहे हैं, लेकिन अभी जिस जो परिस्थिति में ये चार महीने से जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने जो संघर्ष किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई दूंगी। और जो लोग आज भी तृणमूल कांग्रेस के कह सकते हैं, देखिए तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है, ये कह सकते हैं कि पहले सत्ता पक्ष में थे, अब विपक्ष में हैं। तो विपक्ष में आने के बाद देखिए हर दौर में होता रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बल्कि जो लोग भी सत्ते से जाते हैं, कई लोग उनका दामन छोड़ देते हैं। तो जो लोग आज भी डट के खड़े हैं, डट के लड़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने विचारों के साथ समझौता नहीं किया, जिन्होंने अपने वैल्यूज को नहीं खोए, ममता बनर्जी के आदर्शों पे जो आज भी लड़ रहे हैं, डेफिनेटली वो ममता बनर्जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुद्दा है वो सिर्फ भाजपा को हराने की, गिराने की या उनको पिछाड़ने की नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का मुद्दा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है। इंडिया गठबंधन में जैसे जिस तरीके से मुद्दे से जिस लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है, वही लड़ाई यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस भी लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके का कोई डिस्कशन का पात्र है, बिकॉज ममता बनर्जी आज वहीं डटी हुई है, उनको अपने सीट से हरवा दिया गया, ये जो भी हुआ मैं उस बारे में नहीं जाती हूँ, किस परिस्थिति में जो चीजें हुई वो पूरे देश ने देखा।
1: नहीं, आज अब आप सबको कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी लेफ्ट फार लेफ्ट सब लोग साथ में आ जाए, कोई आप पे भरोसा क्यों करे? पहले तो आपने उनको यूज एंड थ्रो कर दिया, आज वो आपका भरोसा क्यों करे जब आपके खुद के लोग कह रहे हैं कि आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, आप उनको पीट रहे हैं, आपके जो साथी थे पहले कांग्रेस वाले वो कह रहे हैं आप उनको पीट रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं, उनके साथ आपने चुनाव नहीं लड़ा। Why should they trust you, जब आप उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, वो क्यों तृणमूल के साथ आए कांग्रेस?
2: देखिए, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जब लोगों का तृणमूल कांग्रेस में लगभग 80% लोग तृणमूल थे, जो लोग किसी पद में थे वो भी तृणमूल थे, जो पद में नहीं थे वो भी तृणमूल थे, तो ये होता ही है। अब तृणमूल जो है बहुत ज्यादा बहुमत के साथ 2021 में जब तृणमूल आई थी, तो हर एक लोग, अभी एक नॉर्मल से जो लोग भी होते थे ना, वो लोग भी कहते थे कि भाई मैं तृणमूल का समर्थक हूँ, मैं तृणमूल।
1: रिजु दत्ता सोफिया खान को रखिए, रिजु दत्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। चलिए, इवेंचुअली ये लोग सब साथ में जो डट करके खड़े हैं वही लड़ेंगे, पीपल लाइक यू कैन लीव, आपने छोड़ दिया अलग बात है, पर जो लोग अभी भी लड़ रहे हैं वो इवेंचुअली साथ में आएंगे।
3: नहीं, जो पार्टी के कर्मी है, जो आज भी पार्टी के साथ खड़ी है, तो उनको तो मैं भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और बात यह है कि तो हमने तो छोड़ा नहीं, हमको तो निकाला गया धन्यवाद बोलने के लिए। और मैंने पार्टी के लिए क्या किया है क्या नहीं किया है, मुझे लगता है कि देश के हर नेशनल चैनल के आर्काइव में वो है। एंड द टफेस्ट असाइनमेंट्स अगेंस्ट द करेंट चीफ मिनिस्टर इन हिज होम ग्राउंड ऑफ नंदीग्राम, आई वॉज देयर ड्यूरिंग द पंचायत पोल्स, आई वॉज सेंट टू नंदीग्राम ब्लॉक 1 फॉर 27 डेज ऑफ मिस्टर अभिषेक बनर्जी शेबास्त्रा, आई वॉज पोस्टेड एट नंदीग्राम इवन 2 days बिफोर द पोल रिजल्ट ऑन 4th May, ऑन 2nd May यू कैन सी तृणमूल कांग्रेस सेंट मी एंड MP शायनी घोष एज द काउंटिंग ऑब्जर्वर पूर्व मेदनीपुर विच इज द अधिकारी बेस्टियन। सो आई डिड माई पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू अब्यूज एनीबडी हु इज डूइंग तृणमूल कांग्रेस, नथिंग अगेंस्ट देम। I have one sincere appeal to everybody who is doing Trinamool Congress. क्या मैं बोल सकता हूँ पद्मजा?
1: बोलिए बोलिए।
3: So my only humble opinion, Sophia, I know personally, she is a good girl. She is doing the job I have been doing for the last 9 years. So I understand where she is coming from. But or I have defended the indefensible, Padmaja, you know, RG Kaur, Sandesh Khali, Harsh Khali. On 22nd July, when hordes of cash were...
1: No, so who told you to defend the indefensible? No. Then no, people like Sophia Khan will say, Riju Datta, that at this time, at least they are still standing where they were standing 1 month ago. आपने defend किया indefensible को और अब आप पलट गए क्योंकि TMC हार गई है. Sophia Khan आज भी वहीं खड़ी हुई है.
3: Padmaja, I know you when you are in Times Now and you are doing fantastically well here. So when I was in Trinamool Congress, I did what I was supposed to do as the spokesperson of the
1: party. But when I was in another channel, Riju Datta, at that time I did not tell a girl who had been arrested by the West Bengal police to say कि अगर ये मेरा बेटा होता मैं इसका अंतिम संस्कार कर देता. मैंने कभी नहीं कहा किसी लड़की के बारे में दैट आई वुड हैव डन द अंतिम संस्कार ऑफ दिस गर्ल. यू सेड दिस अबाउट अ यंग टीनेजर. यू हैव डिफेंडेड द मर्डर एंड रेप ऑफ अ यंग गर्ल एंड द फैक्ट दैट TMC कार्डर वेंट एंड बीट अप यंग डॉक्टर्स. You did it because at that time you were in power, Riju Datta, and today Sophia Khan will ask you that. आज नहीं आप पलट सकते ना क्योंकि TMC हार गई.
3: ऑफकोर्स मैं पलट नहीं रहा हूं और मैं टीएमसी से निकला नहीं हूं, मुझे निकाला गया है. अगेन आई रिएटेड दैट पॉइंट, बट द थिंग इज अगेन आई विल से विच यू हैव रेज्ड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन पद्मजा, व्हाटएवर थिंग

0: I did what I said at the TMC was in power, and as the spokesperson of the party, I did. There are multiple spokespersons that come on your channel who were in different parties before, who abused BJP like anything. Now they are in BJP spokespersons. So these things happen when you, as like Sophia, I hope she is made the spokesperson of Trinamool Congress. She has been appearing on her own on channels for a very long time, and she is doing a job, and she is still standing with TMC. Hmm. I also would have stood with TMC if one of my leaders would have picked up my call, or forget picked up my call, would have sent us little WhatsApp text, are you okay? Three letters. Do I not deserve that after 13 years giving this party? Are you okay? I asked Sophia here. She has protected her family on her own. She cannot say that, I know on record, but is the Honorable MP of North Calcutta picked her phone up? I am telling you, no. There is a WhatsApp chat that has come viral where Honorable Sudeep Bandyopadhyay is saying, when councillors are saying we are unprotected, people are ransacking our house, Honorable MP is saying, Hati chale bazaar, kutte bhauke hazaar. Ye alam hai. और कोई अपना परिवार को बचाए और बीजेपी को थैंक यू बोले तो निकाल दो उसको पार्टी से.
1: बताइए सोफिया खान, जब अपने घर ही में लोग सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों को कैसे अपने साथ खड़ा करेंगे?
2: एक मिनट का समय दीजिएगा, मैं पूरी चित्र बताती हूँ. मैं कुछ हद तक, देखिए रिजू जी को मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ पर्सनली, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और रिजू जी का जो टेक था ना, मैं नहीं कहती कि वो गलत है, सही है. देखिए 4 तारीख के बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के घरों को, दफ्तरों को जैसे जलाया गया, जैसे डराया गया, जैसे मारा गया, जैसे गोलियां चली दोनों तरफ से, और किसी भी तरह का सुरक्षा कुछ भी नहीं था, तो देखिए डेफिनेटली ये तो कुछ
1: ना. रिजू दत्ता कह रहे हैं वो तृणमूल वालों ने ही मारा है तृणमूल को, यही तो फर्क है. वो कह रहे हैं कि तृणमूल के ही लोगों ने तृणमूल को मारा है.
2: किसने किसको मारा, सबकी जाने जाने होती हैं, यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी के सीए थे, उनको जो मारा गया वो भी एक इंसान था. मैं किसने किसको मारा, मैं उस पर नहीं आ रही हूँ. बीजेपी के लोग मारे, वो भी ग्रास रूट लेवल के लोग.
1: बोलिए रिजू, बोलिए.
2: लोग मारे वो भी.
1: अच्छा, पूछे.
2: मैं इस चीज को मान रही हूँ, यहाँ पर मैं जी के साथ हूँ. इन्होंने देखिए इनका जो टेक है ना, ये हो सकता है कि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए ये स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए था, ये मुझे लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है.
0: अच्छा सोफिया,
2: इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था रिजू जी आपको, डट के खड़े रहना था. मैं कुछ हद तक मान रही हूँ आपकी बात. आज मैं एक लड़की हूँ, मुझ पर भी, मैं ऑफिशियल एक स्पोक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भी बहुत से थ्रेट्स का सामना करना पड़ा. कई लोगों ने मुझे समझाया, अरे सोफिया तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, मत बोलो.
0: सवाल पूछ सकता हूँ?
1: पूछे पूछे.
0: एक सवाल. तृणमूल कांग्रेस लास्ट 8-10 दिन से, मतलब सॉरी 8-10 दिन नहीं, 4 तारीख से आज तक हैज बीन सोफिया एक सवाल सुन लो.
2: जब मैंने कदम रखा था ना, तो ये फैक्टर को मुझे देख के रखना होगा.
1: ओके ओके, आस्क रिजू दत्ता, आस्क योर क्वेश्चन.
0: सो माय सिंगल पॉइंट क्वेश्चन इज दिस,
2: नहीं होता ना,
0: दैट तृणमूल कांग्रेस फ्रॉम 4th टिल टुडे 11th, हर रोज तृणमूल कांग्रेस अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट पोल वायलेंस के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं. सोफिया आपको पता है सारे लीडर्स पोस्ट कर रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस के आज भी 80 विधायक हैं और 42 सांसद हैं, जिनके पास प्रिविलेज भी है, जिनके पास सिक्योरिटी भी है. जब आप फोटो और वीडियो डाल रहे हैं पोस्ट पोल वायलेंस का, आप डाल रहे हैं कहां पर हो रहा है, किस जीपी में हो रहा है, एक भी सांसद वहां क्यों नहीं गया, एक भी विधायक वहां क्यों नहीं गया, कैडर्स मर क्यों रहे हैं?
2: मेरा क्वेश्चन है आपसे रिजू जी, मैं एक क्वेश्चन करूंगी, सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगी. देखिए जो हालात थे ना, जिस तरीके से 91 लाख लोगों का नाम काटा गया और 27 लाख लोगों को वोटिंग नहीं करने दिया गया, कुछ हद तक संभव, ये हम भी समझ रहे थे कि हमारी हार कुछ हद तक निश्चित है, ये हम जानते थे. लेकिन ये स्टेटमेंट अगर आप हारने से पहले देते ना, तो मैं खुद आपको सैल्यूट करती, सम्मान भी करती. लेकिन अभी हारने के बाद अचानक से सेकेंड डे आकर बीजेपी के लोगों का आप अचानक से तारीफ करने लगेंगे और उनका
0: इतना कहूंगा
2: बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगेंगे, ये मर्दानगी नहीं है. ये मैदान को छोड़ के भागने वाली बात है रिजू जी, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए. अभी आपको किसने, आप ऑफिशियल स्पोक पर्सन थे, डेफिनेटली यू वॉज इन डायरेक्ट टच विद अभिषेक बनर्जी एंड देयर पीपल.
1: ओके,
2: आपको इस तरीके का लगा तो
1: दिस. ओके, आई विल गिव रिजू एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल ओपन दिस अप अगेन. यस रिजू, रिस्पॉन्ड. यस,
0: एंड माय ओनली रिस्पांस इज व्हाट सोफिया सेड राइट नाउ. आई वाज वेरी क्लोज टू अभिषेक बनर्जी, शी सेड राइट नाउ, राइट? एंड यस, इट इज अ फैक्ट, बट माय हर्ट, माय पेन इज दैट फ्रॉम 4th टिल टुडे आई हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल टेक्स्ट फ्रॉम मिस्टर बनर्जी सेइंग आर यू ओके. after giving 13 years to this party and doing their toughest assignments. Number one point.

0: हम लोगों को इन खर्चों में अपनी कटौती करनी चाहिए।
1: स्थिति गंभीर बनी हुई है देश को लेके, अब एक दूसरे कंट्रियों में युद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब अपने भारत पे भी असर इस चीज़ का पड़ रहा है। लोगों को बहुत अच्छी तरीके जान भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ सिर्फ जनता के लिए यही चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए रूल को। जितने मंत्री को जितनी ज़रूरत है काटले की उतनी गाड़ी जरूरत उनके साथ चले, बाकी जो तीन तीन चार चार गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलती है वो भी हटाई जाए।
2: विदेश यात्रा भी सारे अमीर लोग ही करे हैं, गरीब लोगों के बस की विदेश यात्रा करनी है? सारे अमीर लोग यात्रा करे हैं, अमीरों पे लगाम लगाओ ना, इन पे लगाम लगाओ।
3: ये बयान तो ठीक है, मगर जिसको खरीदना है, शादी हो कुछ भी हो, तो फंक्शंस में खरीदना है तो वो तो खरीदेगा, उसकी तो नीड है।
4: ये नहीं लगता है कि हम लेडीज जो हैं हम लोग कुछ भी कम करने वाली हैं। आई मीन इफ यू हैव टू बाय वी विल बाय, आई थिंक सो। एंड कुछ हद तक हाँ लोगों पे इम्पैक्ट आएगा।
5: सिचुएशन ऐसी है जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें अलार्म की जरूरत होती है, ऐसे ही आम आदमी को देश के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो मोदी जी जब किसी चीज का अलार्म बजाते हैं तो पब्लिक सतर्क हो जाती है, तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि एक ये अलार्मिंग सिचुएशन है।
6: कारीगर हैं, यहाँ के शिल्पकार हैं, यहाँ के अच्छे वो हैं, उसी से तो बहुत लोगों को रोजगार भी लगा है। सोना ना खरीदो तो लोगों पे इस चीज का गलत असर ही हो पड़ा कि सोना खरीदो ही ना भाई। तो उन शिल्पकारों का, उन सुनारों का जो काम करने वाले कारीगर हैं, उनका क्या होगा?
7: सराफा व्यापारियों का घर कैसे चलेगा, इसका दिशा निर्देश जारी करें।
8: सोना नहीं बेचेंगे तो वो लोग खाएंगे क्या, उसके उसके उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे, और उसके साथ जुड़े वो लोग और सब चीज़ें, और बैंक की जो किससे वो देते हैं, जो लोन ले रखा है वो सब कैसे जाएगा?
9: And from sacred rituals atop Somnath's towering shikhar to a spectacle blending faith with modern engineering, Prime Minister Modi's temple visit turned into a grand showcase of symbolism and spirituality at the Somnath temple today. Here's a detailed report on that.
10: Har Har Mahadev!
11: From chants of Har Har Mahadev,
10: Har Har Mahadev, Har Har Mahadev,
11: to saffron-lined streets packed with devotees, Somnath turned into a spectacle of faith and power politics. Prime Minister Narendra Modi arrived in the temple town to mark the 75 years of Somnath's restoration. A shrine seen as a symbol of India's civilizational resurgence.
12: Main yahan dekh raha hu hazaron varshon ki aadhyatmik chetna ko jisne मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
11: The centerpiece of the ceremony, the Grand Kumbh Abhishek. Holy waters collected from 11 major pilgrimage sites across India were offered during the rituals.
13: Bhave bhave nati bhave bhavasman bhavad bhavai namaha vamadevai namo jeshthai namaha shreshthai namaha rudraai namaha.
11: Then came the breathtaking moment. A sacred kumbh was lifted nearly 90 meters high by a massive crane, all the way to the temple's towering shikhar for the consecration ritual. Ancient tradition powered by modern engineering.
13: Om Tridalam Trigunakaram Tinetram Chatrayudam Trijanma Papa Samaharam Ekabilvam Sivarpanam.
11: Prime Minister Narendra Modi performed the Mahapuja amid Vedic hymns,
13: Bilvapatrani Samarpayami,
11: temple bells and